0: हम सभी को पता है वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभी शुरू है, यानी कि SIR प्रोसेस। BLO ऑफिसर आपके घर पर आए होंगे, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी होगी और एक फॉर्म फिलअप किया होगा, दैट्स कॉल्ड SIR प्रोसेस। और इसका सिंपल मतलब है वोटर लिस्ट को वेरीफाई और अपडेट किया जा रहा है ताकि एलिजिबल वोटर्स का रिकॉर्ड एक्यूरेट रहे। और अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी वोटर का इन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि गणना अर्ज रिसीव नहीं होता, यानी कि वो BLO ऑफिसर आपके घर पर आए होंगे और आप घर पर नहीं थे या फिर आपने वो फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा, तो ऐसे लोगों का नाम लिस्ट में नहीं आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि वोटर लिस्ट से आपका नाम डिलीट हो चुका है, ऐसा नहीं है। एक और चांस अभी आपके पास है, ऐसी सिचुएशन में आप क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल करने की अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है। तो अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया है तो 24 अगस्त से लेकर 23 सितंबर के बीच में फॉर्म नंबर जो 6 होता है, फॉर्म 6, वो फिलअप कीजिएगा एंड अप्लाई कीजिएगा अपने नाम के लिए। और साथ ही साथ जो यंगस्टर है जिन्होंने हाल ही में 18 साल अपने कंप्लीट किए हैं, तो वो भी अपना नाम अप्लाई कर सकते हैं वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए। और हाँ, अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है, वोटर डिटेल्स फोटो में कुछ गड़बड़ी है या कुछ करेक्शन आपको करवाना है, तो वो भी आप कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके। सो चेक कीजिएगा आपका नाम आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया तो जो मैंने बताया उस तरीके से आप वो चीजें फॉलो कीजिएगा और नाम ऐड कीजिएगा, क्योंकि वोट सिर्फ एक राइट नहीं है, डेमोक्रेसी में आपकी आवाज है। तो इसी आवाज को उठाइए और चेक कीजिए। बाकी अभी अपने गानों का आवाज बढ़ाते हैं और एंजॉय करते हैं आने वाला सुपर डुपर हिट गाना।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: हम सभी को बताया कि फिलहाल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR की प्रोसेस शुरू है। तो आपने ये फॉर्म फिलअप किया है ना और आपका नाम वोटर लिस्ट में है ना, एक बार चेक कीजिएगा। एंड यू नो व्हाट, महाराष्ट्र में ना तो टोटल 9,78,00,000 से ज्यादा वोटर्स है और इनमें से 9,69,00,000 से ज्यादा लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप किया है और इनमें से तकरीबन 7,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक ये फॉर्म डिजिटल तरीके से फिलअप किया है और वहीं 1,08,00,000 से ज्यादा वोटर्स ने अब तक इन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि गणना अर्ज फिलअप नहीं किया, यानी कि इनका अब तक ये काम पेंडिंग है। ये होते लेट लतीफ लोग, ऐसे 1,00,00,000 से ज्यादा है पूरे महाराष्ट्र में। और जिन वोटर्स ने अब तक एप्लीकेशन फिलअप नहीं किया है उनकी लिस्ट भी आने वाली है और अगर इस लिस्ट में आपका नाम हो तो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा या कुछ चेंजेस हो गए, करेक्शन होगा, अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ होगा तो फिर से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और हाँ, कुछ लोग ना थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं या तो फिर अनजाने में उनसे गलती होती है, तो आपने अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है सेक्शन 31 के तहत। इसीलिए एक बार अपना नाम, एड्रेस और वोटर डिटेल्स चेक जरूर कीजिएगा फिलअप करने से पहले। और हाँ, वोटर लिस्ट में सिर्फ नाम होना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी इन्फॉर्मेशन सही होना भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा क्योंकि वोट आपका है, आवाज आपकी है। और फिलहाल आवाज अपने गानों की बढ़ाते हैं मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ। स्टे ट्यून
1: Only on MGM 90.8 FM.
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 9067612000.

0: नमस्कार, छत्रपति संभाजी नगर,
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM।
2: मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
3: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तू भी ना आती।

0: जितनी आलीशान होटल वहां पर उतनी हाइजीन मेंटेन होती होगी ऐसा हमें लगता होगा, लेकिन दिसता तसा नस्त मन जग फस्त। फिलहाल ना तो FDA अपने शहर में भी अच्छे खासे काम कर रहा है, कार्रवाई पर कार्रवाई करते जा रहा है। और पहले लग रहा था कि बस ये छोटे मोटे होटल्स पर ही कार्रवाई होती, लेकिन नहीं, अपने शहर की एक आलीशान होटल है और जहां पर हमें लगता था कि यार इतनी बढ़िया ये होटल है, इतना इसका नाम है, यहाँ का खाना कितना टेस्टी होगा, लेकिन वहां पर जो चीज था वो एक्सपायर्ड हो रहा था। वहां पर जो किचन में सामान था वो लगभग सड़ चुका था, किसी की एक्सपायरी डेट खत्म हो गई थी और वही वो यूज कर रहे थे। एंड सफाई के मामले में तो भाई पत्ते गुल हो चुके थे, सफाई जीरो थी किचन में। तो वही ना कि अगर आपको लगता होगा कि यार ये इतने आलीशान होटल, इसका इतना नाम है, यहाँ पर कितनी हाइजीन मेंटेन होती होगी और कितने रूल्स और रेगुलेशन होती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब दिखाऊ माल होता है। तो इसलिए कहते हैं कि सफाई रखा कीजिएगा, लेकिन नहीं, लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे, बट FDA लोगों को सुधार रही है आणि या हॉटेलचं किचन ना निलंबित करण्यात आलेलं आहे, त्याचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे, बिकॉज रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं किए। और ऐसे बड़े होटल में जाने के बाद मुझे ऐसे लोग थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं, इतनी एस्थेटिक होटल है, कितने तहजीब से लोग खाना खा रहे हैं, कितना बढ़िया खाना है, कितना हाइजीन मेंटेन है, बट रियलिटी कुछ और होती है, दिखता कुछ और है। हमें जो ऑथेंटिक लगता है उसके पीछे कितनी मिलावटी चीजें होती है ये किचन में जाकर ही पता चलता है। तो इस भ्रम में आप बिल्कुल मत रहिएगा, जितनी आलीशान होटल है वहां पर उतना ही हाइजीन मेंटेन होता होगा, क्या पता जो दिखता है वो नहीं होता। सो बी सेफ, बी केयरफुल, आणि बाकी सुद्धा जे मोठे छोटे सगळे हॉटेल इंडस्ट्री आहेत ते तरी सुधारा आणि रूल्स अँड रेग्युलेशन फॉलो करा, नाही तर पुढचा नंबर तुमचाही असू शकेल। सो थँक यू FDA हमें इतना अच्छे तरीके से आईना दिखाने के लिए, वरना हम तो एक अलग भ्रम में थे। खैर, भ्रम को जरा तोड़ते है और फिलहाल कुछ गाने एंजॉय करते है मेरे यानी कि RJ अदनान के साथ।
1: Only on MGM 90.8.

0: पीछे सितंबर के महीने में होने वाली थी इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की सीरीज। तो अब ये सीरीज कैंसल हो चुकी है। जी हाँ, सच्ची कह रहा हूँ। और उसके बदले अब होगी इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की मैच, यानी कि वो सीरीज होगी T20 इंटरनेशनल सीरीज, जो कि 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के दरमियान हो सकती है, ऐसा कहा गया है। अब रीजन क्या है बांग्लादेश के साथ की सीरीज कैंसल होने का, कि वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उसी एक रीजन की वजह से ये सीरीज और बांग्लादेश का जो दौरा था वो कैंसिल कर दिया गया है। एंड अफगानिस्तान के साथ अब ये इंडिया की मैचेस होगी। बाय द वे, कुछ भी कहो, अफगानिस्तान के साथ जब इंडिया खेलता है तो मजा आ ही जाती है। एंड खास बात यह है कि यार वो मैच नहीं, एक फैमिलियर सा माहौल हो जाता है, चाहे फिर फैंस के बीच में हो या फिर क्रिकेटर के बीच में हो। अब तक हमने देखा है कि अफगानिस्तान ने टीम इंडिया को हमेशा सपोर्ट ही किया है, चाहे फिर अफगानिस्तान हार भी जाए तो भी वो टीम इंडिया को सपोर्ट करती है। टीम इंडिया का भी ना तो एक गुड वाला बर्ताव अपने अफगानिस्तान टीम के साथ है, और BCCI ने अफगानिस्तान को हमेशा सपोर्ट ही किया है। और ये सीरीज भी उसीलिए हो रही है कि जो अफगानिस्तान के नए प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सपोर्ट मिले, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का और ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाए जो उनके नए प्लेयर्स हैं उनको। तो ये सीरीज होगी 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के दरमियान T20 मैचेस, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। सो स्टे ट्यून्ड।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: आनंदही डबल. स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत.
1: द्वारकादास श्याम कुमार स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत.
2: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत.
0: पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991.
3: इस इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर
4: शिखास और एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए लेकर आए हैं स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026, साथ ही फूड, म्यूजिक कॉन्सर्ट और बहुत कुछ.
3: 14 से 16 अगस्त सुबह 11 से रात 9 बजे तक, सागर रिसोर्ट चिकलठाना, छत्रपति संभाजी नगर.

0: सो 14 अगस्त को बॉलीवुड में ट्विस्टिंग फिल्में ऑडियंस के बीच आ रही है फुल ऑन इंडिपेंडेंस डे पर एकदम छा जाने के लिए। और सबसे पहले बात करते हैं बंटवारा 1947 इस फिल्म की। राजकुमार संतोषी जी की ये हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है, पार्टीशन के बैकड्रॉप पर बेस है और 14 अगस्त यानी कि आज ही थिएटर में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के अंदर आपको सनी पाजी दिखाई देगी और प्रीति जिंटा बैक टू बिग स्क्रीन आ चुकी है इस फिल्म के जरिए और अली फजल भी इस फिल्म के अंदर आपको दिखाई देगी। उसी के बाद वो कहते हैं ना कि अक्का बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, तो इमरान हाशमी की जो सबसे प्यारी फिल्म है आवारापन, उसका सीक्वल आवारापन 2 आज यानी कि 14 अगस्त को रिलीज होने जा रहा है। तकरीबन 19 साल के बाद ये कहानी फिर से पर्दे पर लौट रही है आवारापन 2। शिवम की कहानी एक बार फिर स्क्रीन पर आपको रुलाएगी भी और इसके गाने तो भाई आज भी हिट है। सो इस वीकेंड आपके पास दो फिल्मों के प्लान है, बंटवारा 1947 एंड आवारापन 2। कौन सी आप देखोगे जरा बताइए और ये फिल्में देखने के बाद आपको कैसी लगी ये भी हम तक जरूर पहुंचाइए। DM ऑन इंस्टा RJ Adnan एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 9067612000.

ट्रैफिक अपडेट, क्योंकि आज शहर में ट्रैफिक में थोड़ा बदलाव किया गया है। तो बात कुछ ऐसी है कि आज अपने छत्रपति संभाजीनगर में तिरंगा रैली निकलने वाली है, तो इसी सिलसिले में शहर का जो सबसे इम्पोर्टेंट इलाका है, जो चौक है क्रांति चौक, वो फिलहाल बंद रहेगा। सो तिरंगा रैली क्रांति चौक में रहेगी, तो इस वजह से गोपालटी से लेकर क्रांति चौक का पूरा रास्ता बंद हो चुका है और क्रांति चौक से लेकर सिल्लीखाना तक का भी रास्ता बंद रहेगा। तो इसके लिए आपको ऑप्शनल रास्ता यूज करना पड़ेगा। सेंट्रल बस स्टैंड तरफ जाने वाली ट्रैफिक पूरी सिल्लीखाना चौक से कार्तिकी चौक इस रास्ते पर डाइवर्ट की गई है। एंड अगर आपको जालना रोड से होते हुए बाबा पेट्रोल पंप की ओर जाना है, तो आपको क्रांति चौक का ब्रिज यूज करना पड़ेगा, नीचे से आप जा नहीं सकते। आणि पंचवटी चौक ते गोपाल टी पॉइंट हा रस्ता सुद्धा बंद असेल, त्यामुळे कोकणवाडी मार्गे पूर्ण ट्रॅफिक वळवण्यात येणार आहे। आणि सेशन कोर्ट ते गोपाल टी या रस्त्याने जर तुम्हाला जायचं असेल तर कोकणवाडी चौकचा वापर तुम्हाला करावा लागेल सेशन कोर्ट कडे जाण्यासाठी। तर आज तिरंग रॅली दुपारी 12 वाजेपासून सुरू होणार आहे, तर रॅली संपुस्तर अशा प्रकारे हा रस्ता बंद असेल। तर ही गोष्ट लक्षात ठेवा, इम्पॉर्टंट अपडेट अबाउट ट्रॅफिक, अँड स्टे ट्यून ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: इस इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर
3: शिखास और MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए लेकर आए हैं स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026, साथ ही फूड, म्यूजिक कॉन्सर्ट और बहुत कुछ.
2: 14 से 16 अगस्त सुबह 11 से रात 9 बजे तक सागर रिसोर्ट.

0: wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 9067612000.
2: देशभक्ति का रंग है गहरा, दिल में भरे तो हर दिन सुनहरा, क्योंकि तिरंगे की ताकत सिर्फ 15 अगस्त तक नहीं, ये तो 365 दिन हमारे दिल में धड़कती है। आओ इस रंग को और गहरा करें और दिल से इस तिरंगे को सलाम करें।
3: इसी तिरंगे को सलाम करते हुए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रॉम MGM 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।
1: जब तिरंगा आसमान में लहराता है तो हमारा वजूद लहराता है। ये वही मिट्टी है जिसमें भगत सिंह को जन्म दिया, वही हवा है जिसमें महात्मा गांधी जी का सपना बसा है। हम सिर्फ भारत में नहीं रहते, भारत हमारे अंदर रहता है। आओ इस मिट्टी की खुशबू महसूस करें और गर्व से कहे,
0: सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रॉम एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है NGM 90.8 FM,
2: साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है। हेलो हाय नमस्कार, छत्रपति संभाजी नगर,
2: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8

फाइव एंड हाफ गर्लफ्रेंड्स के बाद ये रियलाइज किया कि ऊपर वाले ने एक ही तुम बनाया। पर तब तक तो मेरी यादों की नहीं, सबकी सितारा बन चुकी थी।

0: इस इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर।
1: शिखास और एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए लेकर आए हैं स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026, साथ ही फूड, म्यूजिक कॉन्सर्ट और बहुत कुछ।
0: 14 से 16 अगस्त सुबह 11 से रात 9 बजे तक, सागर रिसोर्ट चिकलठाना, छत्रपति संभाजी नगर।
2: बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा। स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्यामकुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
3: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
2: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंदही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
3: द्वारकादास श्यामकुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
4: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्यामकुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ति चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

फैशन सिर्फ स्टाइल नहीं अपनी रूट्स को सेलिब्रेट करने का एक अंदाज है स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 लियोनार्डो दा विंची स्कूल ऑफ डिजाइन MGM यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स लेकर आ रहे स्पेशली डिजाइन आउटफिट जो बने हैं ब्यूटीफुल हैंडलूम फैब्रिक से और फैशन के साथ इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट की क्रिएटिव इंस्टॉलेशन भी होगी स्पेशल अट्रैक्शन स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 14-16 अगस्त एंड फैशन शो 15 अगस्त इवनिंग 7 PM एट सागर रिसोर्ट चिकलधारा छत्रपति संभाजीनगर

फैशन सिर्फ स्टाइल नहीं अपनी रूट्स को सेलिब्रेट करने का एक अंदाज है। स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 लियोनार्डो दा विंची स्कूल ऑफ डिजाइन MGM यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स लेकर आ रहे हैं स्पेशली डिजाइन आउटफिट जो बने हैं ब्यूटीफुल हैंडलूम फैब्रिक से और फैशन के साथ इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट की क्रिएटिव इंस्टॉलेशन भी होगी स्पेशल अट्रैक्शन। स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 14-16 August एंड फैशन शो 15 August इवनिंग 7 PM एट सागर रिसोर्ट चिकलधारा छत्रपति संभाजीनगर।

0: Admission for 2025-26. MGM University and 6 Sidco. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.
1: इस इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर
2: शिखास और एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए लेकर आए हैं स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026, साथ ही फूड, म्यूजिक कॉन्सर्ट और बहुत कुछ।
1: 14 से 16 अगस्त सुबह 11 से रात 9 बजे तक सागर रिसोर्ट चिकलठाना छत्रपति संभाजी नगर।
3: बाय वन गेट वन फ्री होय खरं एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
0: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
3: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंद ही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत
0: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
1: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 5503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

फैशन सिर्फ स्टाइल नहीं अपनी रूट्स को सेलिब्रेट करने का एक अंदाज है। स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 लियोनार्डो दा विंची स्कूल ऑफ डिजाइन MGM यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स लेकर आ रहे स्पेशली डिजाइन आउटफिट जो बने हैं ब्यूटीफुल हैंडलूम फैब्रिक से और फैशन के साथ इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट की क्रिएटिव इंस्टॉलेशन भी होगी स्पेशल अट्रैक्शन। स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 14-16 अगस्त एंड फैशन शो 15 अगस्त इवनिंग 7 PM एट सागर रिसोर्ट चिकलधारा छत्रपति संभाजीनगर।

0: हम सभी को पता है वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभी शुरू है, यानी कि SIR प्रोसेस। बीएलओ ऑफिसर आपके घर पर आए होगी, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी होगी और एक फॉर्म फिलअप किया होगा, दैट्स कॉल्ड SIR प्रोसेस। और इसका सिंपल मतलब है वोटर लिस्ट को वेरीफाई और अपडेट किया जा रहा है ताकि एलिजिबल वोटर्स का रिकॉर्ड एक्यूरेट रहे। और अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी वोटर का इन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि गणना अर्ज रिसीव नहीं होता, यानी कि वो बीएलओ ऑफिसर आपके घर पर आए होंगे और आप घर पर नहीं थे, या फिर आपने वो फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा, तो ऐसे लोगों का नाम लिस्ट में नहीं आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि वोटर लिस्ट से आपका नाम डिलीट हो चुका है, ऐसा नहीं है। एक और चांस अभी आपके पास है, ऐसी सिचुएशन में आप क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल करने की अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है। तो अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया है तो 24 अगस्त से लेकर 23 सितंबर के बीच में फॉर्म नंबर जो 6 होता है, फॉर्म 6, वो फिलअप कीजिएगा एंड अप्लाई कीजिएगा अपने नाम के लिए। और साथ ही साथ जो यंगस्टर है जिन्होंने हाल ही में 18 साल अपने कंप्लीट किए हैं, तो वो भी अपना नाम अप्लाई कर सकते हैं वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए। और हाँ, अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है, वोटर डिटेल्स फोटो में कुछ गड़बड़ी है या कुछ करेक्शन आपको करवाना है, तो वो भी आप कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके। सो चेक कीजिएगा आपका नाम आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया तो जो मैंने बताया उस तरीके से आप वो चीजें फॉलो कीजिएगा और नाम ऐड कीजिएगा, क्योंकि वोट सिर्फ एक राइट नहीं है, डेमोक्रेसी में आपकी आवाज है। तो इसी आवाज को उठाइए और चेक कीजिए। बाकी अभी अपने गानों का आवाज बढ़ाते हैं और एंजॉय करते हैं आने वाला सुपर डुपर हिट गाना।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: திருமூர்த்தி சோக், 9699703562, அனித் சிகல்டானா, 9765822991.
1: कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी च्या यूजी आणि पीजी साठी ऍडमिशन मिळवा. बीटेक आणि एमटेक कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी साठी एमजीएम युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेस च्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
2: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
3: ऍडमिशन ओपन फॉर 2025-26 एमजीएम युनिव्हर्सिटी एंड 6 सिडको. विजिट mgmu.ac.in, कॉल 9503 08 2913.
4: इस इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर
5: शिखास और एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए लेकर आए हैं स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026, साथ ही फूड, म्यूजिक कॉन्सर्ट और बहुत कुछ.
4: 14 से 16 अगस्त सुबह 11 से रात 9 बजे तक, सागर रिसोर्ट चिकलठाना, छत्रपति संभाजी नगर.

0: हम सभी को पता है कि फिलहाल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR की प्रोसेस शुरू है। तो आपने ये फॉर्म फिलअप किया है ना और आपका नाम वोटर लिस्ट में है ना, एक बार चेक कीजिएगा। एंड यू नो व्हाट, महाराष्ट्र में ना तो टोटल 9,78,00,000 से ज्यादा वोटर्स है और इनमें से 9,69,00,000 से ज्यादा लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप किया है और इनमें से तकरीबन 7,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक ये फॉर्म डिजिटल तरीके से फिलअप किया है और वहीं 1,08,00,000 से ज्यादा वोटर्स ने अब तक इन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि गणना अर्ज फिलअप नहीं किया, यानी कि इनका अब तक ये काम पेंडिंग है। ये होते लेट लतीफ लोग, ऐसे 1,00,00,000 से ज्यादा है पूरे महाराष्ट्र में। और जिन वोटर्स ने अब तक एप्लीकेशन फिलअप नहीं किया है उनकी लिस्ट भी आने वाली है और अगर इस लिस्ट में आपका नाम हो तो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा या कुछ चेंजेस हो गए, करेक्शन होगा, अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ होगा तो फिर से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और हाँ, कुछ लोग ना थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं या तो फिर अनजाने में उनसे गलती होती है, तो आपने अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है सेक्शन 31 के तहत। इसीलिए एक बार अपना नाम, एड्रेस और वोटर डिटेल्स चेक जरूर कीजिएगा फिलअप करने से पहले। और हाँ, वोटर लिस्ट में सिर्फ नाम होना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी इन्फॉर्मेशन सही होना भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा क्योंकि वोट आपका है, आवाज आपकी है। और फिलहाल आवाज अपने गानों की बढ़ाते हैं मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ। स्टे ट्यून्ड
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: जितनी आलीशान होटल वहां पर उतनी हाइजीन मेंटेन होती होगी ऐसा हमें लगता होगा, लेकिन दिस्त तो सनस्त मन जग फस्त। फिलहाल ना तो FDA अपने शहर में भी अच्छी खासी काम कर रहा है, कार्रवाई पर कार्रवाई करते जा रहा है। और पहले लग रहा था कि बस ये छोटे मोटे होटल्स पर ही कार्रवाई होती, लेकिन नहीं, अपने शहर की एक आलीशान होटल है और जहां पर हमें लगता था कि यार इतनी बढ़िया ये होटल है, इतना इसका नाम है, यहाँ का खाना कितना टेस्टी होगा, लेकिन वहां पर जो चीज था वो एक्सपायर्ड हो रहा था। वहां पर जो किचन में सामान था वो लगभग सड़ चुका था, किसी की एक्सपायरी डेट खत्म हो गई थी और वही वो यूज कर रहे थे। एंड सफाई के मामले में तो भाई पत्ते गुल हो चुके थे, सफाई जीरो थी किचन में। तो वही ना कि अगर आपको लगता होगा कि यार ये इतने आलीशान होटल, इसका इतना नाम है, यहाँ पर कितनी हाइजीन मेंटेन होती होगी और कितने रूल्स और रेगुलेशन होती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब दिखाओ माल होता है। तो इसलिए कहते हैं कि सफाई रखा कीजिएगा, लेकिन नहीं, लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे, बट FDA लोगों को सुधार रही है। आणि या हॉटेलचं किचन ना निलंबित करण्यात आलेलं आहे, त्याचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे, बिकॉज रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं किए। और ऐसे बड़े होटल में जाने के बाद मुझे ऐसे लोग थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं यार, इतनी एस्थेटिक होटल है, कितने तहजीब से लोग खाना खा रहे हैं, कितना बढ़िया खाना है, कितना हाइजीन मेंटेन है, बट रियलिटी कुछ और होती है, दिखता कुछ और है। हमें जो ऑथेंटिक लगता है उसके पीछे कितनी मिलावटी चीजें होती है ये किचन में जाकर ही पता चलता है। तो इस भ्रम में आप बिल्कुल मत रहिएगा, जितनी आलीशान होटल है वहां पर उतना ही हाइजीन मेंटेन होता होगा, क्या पता जो दिखता है वो नहीं होता। सो बी सेफ, बी केयरफुल, आणि बाकी सुद्धा जे मोठे छोटे सगळे हॉटेल इंडस्ट्री आहेत ते तरी सुधारा आणि रूल्स अँड रेग्युलेशन फॉलो करा, नाहीतर पुढचा नंबर तुमचाही असू शकेल। सो थँक यू FDA हमें इतना अच्छे तरीके से आईना दिखाने के लिए, वरना हम तो एक अलग भ्रम में थे। खैर, भ्रम को जरा तोड़ते हैं और फिलहाल कुछ गाने एंजॉय करते हैं मेरे यानी कि RJ अदनान के साथ।
1: Only on MGM 90.8 FM.

फैशन सिर्फ स्टाइल नहीं अपनी रूट्स को सेलिब्रेट करने का एक अंदाज है स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 लियोनार्डो दा विंची स्कूल ऑफ डिजाइन एमजीएम यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स लेकर आ रहे स्पेशली डिजाइन आउटफिट जो बने हैं ब्यूटीफुल हैंडलूम फैब्रिक से और फैशन के साथ इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट की क्रिएटिव इंस्टॉलेशन भी होगी स्पेशल अट्रैक्शन स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 14 टू 16 अगस्त एंड फैशन शो 15 अगस्त इवनिंग 7 पीएम एट सागर रिसोर्ट चिकलधारा छत्रपति संभाजीनगर

सितंबर के महीने में होने वाली थी इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की सीरीज। तो अब ये सीरीज कैंसल हो चुकी है। जी हाँ, सच्ची कह रहा हूँ। और उसके बदले अब होगी इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की मैच, यानी कि वो सीरीज होगी T20 इंटरनेशनल सीरीज, जो कि 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के दरमियान हो सकती है, ऐसा कहा गया है। अब रीजन क्या है बांग्लादेश के साथ की सीरीज कैंसल होने का, कि वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उसी एक रीजन की वजह से ये सीरीज और बांग्लादेश का जो दौरा था वो कैंसिल कर दिया गया है। एंड अफगानिस्तान के साथ अब ये इंडिया की मैचेस होगी। कुछ भी कहो, अफगानिस्तान के साथ जब इंडिया खेलता है तो मजा आ ही जाती है। एंड खास बात यह है कि यार वो मैच नहीं, एक फैमिलियर सा माहौल हो जाता है, चाहे फिर फैंस के बीच में हो या फिर क्रिकेटर के बीच में हो। अब तक हमने देखा है कि अफगानिस्तान ने टीम इंडिया को हमेशा सपोर्ट ही किया है, चाहे फिर अफगानिस्तान हार भी जाए तो भी वो टीम इंडिया को सपोर्ट करती है। टीम इंडिया का भी ना तो एक गुड वाला बर्ताव अपने अफगानिस्तान टीम के साथ है, और बीसीसीआई ने अफगानिस्तान को हमेशा सपोर्ट ही किया है। और ये सीरीज भी उसीलिए हो रही है कि जो अफगानिस्तान के नए प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सपोर्ट मिले, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का और ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाए जो उनके नए प्लेयर्स हैं उनको। तो ये सीरीज होगी 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के दरमियान T20 मैचेस, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। सो स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

सो आज है फ्राइडे फिल्मी डे, सो कौन सी फिल्में आज रिलीज होगी? सो 14 अगस्त को बॉलीवुड में इंटरेस्टिंग फिल्में ऑडियंस के बीच आ रही है फुल ऑन इंडिपेंडेंस डे पर एकदम छा जाने के लिए। और सबसे पहले बात करते हैं बंटवारा 1947 इस फिल्म की। राजकुमार संतोषी जी की ये हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है, पार्टीशन के बैकड्रॉप पर बेस है और 14 अगस्त यानी कि आज ही थिएटर में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के अंदर आपको सनी पाजी दिखाई देगी और प्रीति जिंटा बैक टू बिग स्क्रीन आ चुकी है इस फिल्म के जरिए और अली फजल भी इस फिल्म के अंदर आपको दिखाई देंगे। उसी के बाद वो कहते हैं ना कि अक्का बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, तो इमरान हाशमी की जो सबसे प्यारी फिल्म है आवारापन, उसका सीक्वल आवारापन 2 आज यानी कि 14 अगस्त को रिलीज होने जा रहा है। तकरीबन 19 साल के बाद ये कहानी फिर से पर्दे पर लौट रही है आवारापन 2। शिवम की कहानी एक बार फिर स्क्रीन पर आपको रुलाएगी भी और इसके गाने तो भाई आज भी हिट है। सो इस वीकेंड आपके पास दो फिल्मों के प्लान है, बंटवारा 1947 एंड आवारापन 2। कौन सी आप देखोगे जरा बताइए और ये फिल्में देखने के बाद आपको कैसी लगी ये भी हम तक जरूर पहुंचाइए। DM ऑन इंस्टा RJ Adnan एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एनजीएम 90.8 FM।

फैशन सिर्फ स्टाइल नहीं अपनी रूट्स को सेलिब्रेट करने का एक अंदाज है स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 लियोनार्डो दा विंची स्कूल ऑफ डिजाइन MGM यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स लेकर आ रहे स्पेशली डिजाइन आउटफिट जो बने हैं ब्यूटीफुल हैंडलूम फैब्रिक से और फैशन के साथ इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट की क्रिएटिव इंस्टॉलेशन भी होगी स्पेशल अट्रैक्शन स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 14 टू 16 अगस्त एंड फैशन शो 15 अगस्त इवनिंग 7 PM एट सागर रिसोर्ट चिकलढाणा छत्रपति संभाजीनगर

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है NGM 90.8 FM।
1: साथ है तो बात है।